0: हेलो
1: क्या हुआ?
0: ए गो तुवगना नाड मेरे रे है
1: Mana yone bila ni rero ku mutangano ro ndabona nkorera ndabona abyi banje ndabona namaze muri kuhinga ndabona